0: अंश ने स्वर से किसी के कर उठ जय जयकार कर उठी जय जयकार।
1: न जाने आज क्यों जी चाहता है स्वर मिलाकर अंश ने स्वर में किसी के, मैंने किसी का स्वर सुनाई नहीं दे रहा है लेकिन मन में भावना उमड़ रही है कि कोई आवाज हमें सुनाई दे रही है, उसकी आवाज में आवाज।